वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।

बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अविनासी ताकि सेवन बिरथी जासी आनंद करे तेरे दासा जप पूरन होई आसा बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौ गर्द हमार रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बढ़ाई राम नाम औखद दिया एका लिव लाई रहा राख लिय तन रखन हार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा पही प्रभ पहे साई सलोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत अनाहावना तुण छुट निकट न जाई हो दूत सलोक महला पंजवा मन में चितव चितवनी उदम करोठ नीत हर कीर्तन का आहार हर देहो नानक के मीत सोहला सोहला रा गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ता खिया करते का होय बिचारो तित कर गाव सोहेला सेवरे हो सृजनहारो तुम गाव मेरे दर भाव का सोहेला हाँ वारी जग सोहेला सदा सुख होय रहा नित नित जी अड़े संभालियन।

कोई आए कहे। राम कली मल्ला पहला। दूसरा पहले पासे जीदा वाक जो जबजी साहब रहराज साहब ते आसा राग दे चाया है, एको ही शब्द है थोड़े जिया लगा मात्रा दे भेद ना। सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्व संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वामन हार। पूरे शब्द विच उस दर दी उस घर दी व्याख्या। प्रथम इस दर दी इस घर दी तलाश कौन करेगा। कुछ दिन दास ने आपनु सरवन कराया जिस दर कारण फेरा उदासी। उदास होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा हूं जो हर घर तो हर दर तो निराश नहीं उदास नहीं वो उस घर दी तलाश नहीं करेगा उस दर दी तलाश नहीं करेगा जो वास्तविक इसे दा ही दर है और मनुख दा ही घर है उथे ही जाना है। जितने चिर तक उस घर दी प्राप्ति नहीं उस दर दी प्राप्ति नहीं इंज समझ लो जीव रस्ते दे च है मंजिले मकसूद ते नहीं। पर महाराज ऐसा कहनन दर घर की सोजी ना है समझ नहीं। आवाज मार देने गुरु अर्जन देव जी मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। ये तन ते अपने घर चला जाता है। तुसी आखोगे तन दा घर की है। एक मिनट लवा जेड़ा मनुख बुढ़ा है वो कुछ दिन पहले आखिर जवान से जेड़ा जवान है कुछ दिन पहले बच्चा से और जो बच्चा है वो कुछ दिन पहले बिंद से खून से। माँ की रक्त पिता बिंधारा बिंद ते जिन पिंड किया। रक्त बिंद करने में बिंद से रक्त से लहू से और जो पहले बिंद से लहू से उसों पहले किसी खुराक से रोटी से भोजन से और जो खुराक है उसों पहले किसी खाक से मिट्टी से मिट्टी से। खाक यात्रा ते चल पाई मिट्टी यात्रा ते चल पाई खाक बन गई खुराक खुराक बन गया खून बिंद। माँ की रक्त पिता बिंधारा खून बिंद बिंद ते खून बन गया बच्चा संजोग तो बन गया बच्चा। बच्चा हो गया जवान जवान हो गया बुढ़ा बुढ़ा फिर मिट्टी देच मिट्टी खाक देच खाक। कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। तो क्या असी खे देच खे होने वास्ते आया कतई नहीं। ये तन खे है ये तन अपने घर पहुंच जाता है। तन दा घर शमशान घाट है पहुंच जाता है। तन दा घर कबर है सारियां दे ही पहुंच जाता है। रोज रोज मनुख दा तन शमशान दे नेड़े ही जा रहे है मरघट दे नेड़े जा रहे है कबर दे नेड़े जा रहे है। भावें कुछ भी रोको ये रुकेगा नहीं अपने घर ही जा रहे है। बाबा फरीद एक श्लोक दे राही जरूर आवाज मार देने आप कहिंदे ने गोर निवाणी सड करे कबर नो मुल्तानी भाषा च गोर कहिंदे ने लेंदी पंजाबी च गोर कहिंदे ने।

ताते अदक डरो मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तारो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजयो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजयो, पश जो उदर भरो

परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे इस सजे हुए गुरमत दीवान अंदर हजूर दी अमृत

गुर का सिख वडभागी है। नाम धन की प्राप्ति हुंदी है। गुरु का सिख वड्डियां भागां वाला हो गया। साहिब कहिंदे ने सतगुर सिख का हालत पलत सवार है। लोक ते परलोक सवार दे ने सतगुरु अपने सिख दा। सतगुर सिख का हालत पलत सवार है। नानक सतगुर सिख को जी ना इथों फिर अगे तुरने जी नाल संवार दे। फिर बेनती के शरीरक तौर ते भी संभाल दे ने, डोलन तो बचांदे ने। कली आत्मा दी गल नहीं, जे जोगे वर्गा हुक्म मन के तुरदा ते मन खिंडदा है, एक चितमनी हुई सी ना, ते सच एवे गुरमुखो, ए ता खौमे दा फुरना ही एक ऐसा है, जिद्दन किसे नू दसे भी ना बंदा, ते तुरदियां फिरदियां अपने जीवन दा अपने कम्मा दी खौमे दे फुरने बना लग पे, वो एहो जी अग ने के अंदरों अंदर ही साड़ देंदे ने। दूजा दिन की कुछ समय तो बाद ही उहदा नतीजा सामने आ जांदा। कांजी दियां बूंदा पहन दुध फट जांदा है। निक्की जी चिंगारी लग जाए ते रूह सड़ के राख हो जांदा है। प्यारे ओ सूक्ष्म फुरने ते ता स्थूल ही निखौमे छड़ दी, सूक्ष्म दी ता गल जे दूर दी। बार मुखी स्थूल खौमे नहीं छड़ दी। सतगुरु कहिंदे ने कई वारी ज्यो ज्यो गुण हुंदा है ना, त्यों त्यों खौमे भी नाल प्रबल होण लग पैंदी। बोर्ड दा रुख है ना जदों छोटा है वह कोमल है, जिस पासे झुकावांगे वह मुड़ जाएगा, पर जिदा कुछ सालां तो बाद वह वड्डा हो गया फिर हलाम दी गल तां छड्डो, उहदियां टाणा विचों भी जड़ धरती उत्ते परलण लग पैंदी। वह निकलदियां ने बाहर। कई वारी तुरदियां बंदा जदों तुरदा है ते अक्सर ओदी खौमे सूक्ष्म रूप विच थोड़े रूप विच है, पर जदों कई वारी बहुत ज्यादा गुण आ जांदा है, खिमा करियो खौमे उस तो ज्यादा प्रबल हो जांदी है। जो सतगुरु ने बाणी च कहा, ते इस कथा दा मतलब यह नहीं कि मैं दो फुट उच्चा बैठा ते केवल आप जी लई, ए मेरे लिए। ताई साहब ने कहा कि देखो इन्नी प्रबल है, हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कब है ना नासी। सतगुरु शरीरक तौर ते भी जे फुरने ही उठदा भाई जोगे दे अंदर फुरने ही उठिया ना, ते वो कोई माड़ा ते नहीं सी ना। उन्हें क्या मैं गुरु का हुक्म मनिया। देखो उस फुरने ने किथे लै हुंदा, जे शुकराना करी जाए मन के मालिक तू हुक्म मनाया, पर वो फुरना बनिया उस फुरने ने किथे लिया खड़ा कीता। पर सतगुरु सज्जन इन्ने संभालण वाले, उन्होंने अपने सिख दी शरीरक तौर ते भी रखवाली कीती। उन्हों किरपालू सतगुरु ने डिगदे होए नू तिलकदे होए नू आप हाथ दे के बचा लिया, प्रतपाल नहीं कीती। भाई विधि चंद जी की गल चल रही सी दुशालिया की, अज भी भट्ट साहिब स्थान है, भावना जिथे आ जाए उथे तर्क नहीं, वह भट्ठ भी चवड़दे ने, हजूर उपर जल पै रहा है। शरीरक तौर ते अग विच पए हुए सिख नू भी सतगुरु तत्ती वाह नहीं लगन देंदे। महाराज कहिंदे ने सतगुरु अपने सिख नू जिंद नाल संभालदे, उहदी लोक परलोक सहायता करदे। इस तो अगा थोड़ा जिहा बाणी चो देखिए, उंज जे असीं धन गुरु नानक साहिब आदि गुरु ने, पर जो उन्होंने अपनी रसना तो शब्द कह बाणी उचारण की, सानू सारिया नू यह गल कही कि गुरबाणी गुरु है, क्योंकि आना है कि गुरु सज्जन कौन है। अज दे परपेख भी जे कथा करांगे ते गुरु सज्जन दी गल आके गुरु ग्रंथ साहिब जी ते मुकेगी, सिख दी गल आके शब्द ते मुकेगी, गुरबाणी ते आपां आके टेक रखांगे। गुरु सज्जन जिंद नाल तुरदे ने, शरीर नाल समाज तुरदा, शरीर नाल जदों जिंद निकलदी है लोक तुरदे ने। पर कई वारी दास बेनती करदा शरीर दे नाल जिंद नाल कदी शरीर भी नहीं जांदा। जोत लैके आया पर जोत नाल वापस तां नहीं गया। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मैं आया, पर जदों जोत निकलदी है

0: अंत न पार
1: सिमरन से जन जिन को ब्रह्मया
0: नारक तिन जन सरनी पया
1: हर सिमरन कर भगत प्रगटाई
0: हर सिमरन लग वेद उपाय
1: हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते
0: हर सिमरन नीच चौकुंट जाते
1: हर सिमरन धारी सब धरना
0: सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन कियो सकल अकारा
0: हर सिमरन मैं आप निरंकारा
1: हर कृपा जिस आप बुझाया
0: नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक
1: दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ
0: शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी
1: जय मात पिता सुत मीत न भाई
0: मन उहा नाम तेरा संग सहाई
1: जय महा ध्यान दूत जम दलै
0: जय केवल नाम संग तेरा चलै
1: जय मुश्किल होवे अत भारी
0: हर को नाम खन माहे उधारी
1: अनक पुनः चरण करत नहीं तरै
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
0: नानक पावो सुख कनेरे
1: सकल सृष्ट को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत होए सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै
0: हर का नाम जपत निस्तरै
1: अनक माया रंग तिख न बुझावै
0: का नाम जब त्यागावे
1: ये मार्ग ये जात अकेला
0: तय हर नाम संग होत सहेला
1: ऐसा नामवान सदा थियाइय
0: नानक गुरमुख परमगत पाइय
1: छूटत नहीं कोट लख बाही
0: नाम जपत तय पार पराही
1: अनक बिघन जह आए संघार
0: हर का नाम तत्काल उधार
1: अनक जोन जन्म मर जाम
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: हो मेला मल कब हु न धोवे
0: हर का नाम कोट पाप खोवे
1: ऐसा नाम जप मन रंग
0: नानक पाइय साधक संग
1: ये मार्ग के गन जाहि न पोसा
0: हर का नाम हा संग तोसा
1: ये पेंड महा अंत गुबारा
0: हर का नाम संग उजियारा
1: जहां बंद तेरा को ना समझानू
0: हर का नाम तह नाल पछानू
1: जय महा भयान तप्त बहु काम
0: जय हर के नाम की तुम ऊपर शाम
1: जहां त्रिखा मन तुझ आ करख
0: जय नानक हर हर अमृत बरख
1: भक्त जना की बर्तन नाम
0: संत जना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट
0: हर के नाम उदरे जन कोट
1: हर जस करत संत दिन रात
0: हर हर औखद साध कमात
1: हर जन कह हर नाम निधान
0: और ब्रह्म जन कीनो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक
0: नानक जन कै व्रत पवित
1: हर का नाम जन को मुक्त जुगत
0: हर कै नाम जन को तृप्त भुगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग
0: हर नाम जपत कब परे न भंग
1: हर का नाम जन की वडियाई
0: हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जोग
0: हर नाम जपत कश नाहे बियोग
1: जन रासा हर नाम की सेवा
0: नानक पूजे हर हर देवा
1: हर हर जन कै मालिक जीना
0: हर तन जन को आप्रभ दीना
1: हर हर जन कै ओट स्थानी
0: हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत बोध जन हर रस राते
0: सुन समाद नाम रस माते
1: आठ जन हर हर जप
0: हर का भगत प्रकट नहीं छपे
1: हर की भक्त मुक्त बहु करे
0: नानक जन संग के ते तरे
1: पार जात देहु हर को नाम
0: काम तेन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा
0: नाम सुनत दर्द दुख लथा
1: नाम की महिमा संतरित बसे
0: संत प्रताप दुर्त सब नसे
1: संत का संग वट भागी पाई है
0: संत की सेवा नाम ते आई है
1: नाम तोल कश अवर न होए
0: नानक गुरमुख नाम पावे जन को। श्लोक
1: बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल
0: पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी
1: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
0: शास्त्र सिमृत ज्ञान
1: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया
0: सकल त्याग बन मध्ये फिरिया
1: अनक प्रकार किए बहु जतना
0: उन दान हूँ मैं बहु रतना
1: शरीर कटाई हूँ मैं कर राती
0: व्रत नेम करे बहु भाती
1: नहीं तो राम नाम विचार
0: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
1: नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै
0: महा उदास तपी सर थीवै
1: अगन माहे हुमत प्राण
0: कनक हसब है भरपूर दान
1: न्योली कर्म करे बहु आसन
0: जैन मार्ग संजमय साधन
1: निमक निमक कर शरीर कटावे
0: तो भी हम बैल न जावे
1: हर के नाम सम सरकश नाही
0: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
1: मन कामना तीर्थ दे छुटै
0: गर्भ घुमान न मन ते हुटे
1: सोच करे दिन सर रात
0: मन की बैल न तन दे जावे
1: इस देही को बहु साध न करे
0: मन ते कभु न दिखिया तरे
1: जल धोवे बहु देह अनीत
0: जित कहा होए काची भीत
1: मन हर के नाम की महिमा ऊच
0: नानक नाम उदरे पतत बहमूच
1: बहुत सियाण जमका भव व्यापै
0: नानक जतन कर तृष्ण ना त्रापै
1: एक अनेक अगन नहीं बुझै
0: ओटो पावदर गैने सजय
1: छूट सुनाही उब पयाल
0: लोहे पे अपे माया जाल
1: अवर करतूत सगली जम डाने
0: गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने
1: हर का नाम जब दुख जाए
0: नानक बोले सहज सुभाए
1: चार पदार्थ जे को मांगे
0: सार जना की सेवा लागे
1: जे को अपना दुख मिटावे
0: हर हर नाम रदा सदगावे
1: जे को अपनी शोभा लोरे
0: साध संगे हम मैं शोरे
1: जे को जन्म मरण ते डरे
0: साध जना की शरणी परे
1: जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा
0: नानक ताके बल बल जासा
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान
0: साध संग जाका मिटे अभिमान
1: आप सुको जो जाने नीचा
0: सोहु गनिया सब ते उच्चा
1: जाका मन होए सकल की रीना
0: हर हर नाम तिन कट कट चीना
1: मारे अपने ते बुरा मिटाना
0: इखै सगल सृष्ट साजना
1: सुख दुख जन साम दृष्टिता
0: नानक पाप कौन नहीं लेपा
1: निर्धन को धन तेरो नाउ
0: निथावे कौन तेरा था
1: नमाने को प्रभ तेरो मान
0: सगल घटाको देवो दान
1: कर्म करावन हार स्वामी
0: सगल घटाके अंतर जामी
1: अपनी गतमत जानो आपे।

0: अष्टपदी
1: रोटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सकल की चिंता जिस मन माहे
0: जिसने व्रता कोई ना है
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनाशी प्रभ आपे आप
1: अपन की कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह है
0: सब की जोत सकल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को भर पै
0: जा सब कुछ तिसका दिया धर पै
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: सब की कला बिना कहता वे
1: जे को होए वह दातार
0: जिस देन हार जाने गा वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थामे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने असथमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़ तरह
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: तिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिरलाई है
0: गुर लिखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग दूत सहज तार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर है रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माही
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आज मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कहे सब कोई
0: मुखो जल हर दरगह सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताकै सतगुर हार है
1: तेन साध के धोई धोई पियो
0: अर्प साध को अपना जियो
1: साध की धूर करो स्नान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वटभागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंत बिगन ते साधु राख है
0: अर्पण गाय अमृत रस चख है
1: और गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वालन हार
0: भूखे कौ देव ते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरु लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिसका करना जोग
0: जिस बिन दूसर हुआ न होग
1: जप जा सदा सदा दिन रहनी
0: भक्ति उच निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रतीत
0: जिस दिन आवे हर प्रभु चीत
1: भक्त भक्त सुनिया तेह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सत्ता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट साचा आकार
0: सच पर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सो जन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेख नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न
0: सब बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी
1: अवनासी ब्रह्म मन मह राख
0: मानो की तू प्रीत त्याग
1: तिसे परे नाहीं किछ होए
0: सब निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाऊं
0: नानक कै मन हे नराव
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जा का नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: अंध रूप मंगल सद जा कै
0: सर्व थोक सुनिए करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: तप मत पीसर कृष्ण मह भोगी
1: त्याई त्याई भक्तां सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाही
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जाको परमाए
0: जन्म रेफरे आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना विद किनो विसार
0: रब बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे थिन माहे
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना विद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जा का सत स्थान
0: सत के वर प्रधान
1: करतूत सत सत जा की वाणी
0: सत पुरख सब माहे समानी
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभ का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जल जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझै जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की आ सब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी सिफत सो करना है हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक जोत स्वभाव है सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद
0: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद
1: सबके रंग राज जन रहे
0: गुर के वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते दुख काटन हार
0: जाके संगत रह संसार
1: जन का सेवक सो वट भागी
0: जन के संग एक लिव लागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसन्न हार
0: सत सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत एकनहार
0: नाम सत सत ध्यानहार
1: आप सत सत सत धारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजनहार को सत सब होई
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया
0: तत के अंत समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपज समाहे समाना
1: बस माही ले बस कटाई
0: ताको भिन्न न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: प्रभु का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभु पालन हारा
0: सेवक की रखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढकै
0: अपने सेवक की सर पर रखै
1: अपने दास को दे बढ़ाई
0: अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आप पत रखै
0: ताकि कदमित कोई न लखै
1: रब के सेवक को न पहुंचै
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रखै
0: भस्म करै लस कर कोट लखै
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य प्रथे जात
1: मारै न रखै अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: परते मन तन तरपी है
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न हिंद दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मतन नाम में नाम समाने
1: मूर्त बैठ सोबत नाम
0: कहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रब अपने जन कीनी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाहे
0: रब अपने से रहे समाये
1: जो हो वाह हो वत सो जान
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: कहो नानक से जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मन तन अपना तिन जन दे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावहे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अब सियान पसगली छाड़
0: इस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण गावष्टपदी
1: सतगुर सेव की करे प्रतपाल
0: सेव को गुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिरे
0: गुर बचनी हर नाम उचरे
1: सतगुर सिख के बंधन काटे
0: गुर का सिख बकार ते हटे
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार है
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है
1: गुर के गृह सेवक जो रहे
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आप उसको कर कष्ट न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचे सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत हो इन कामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्वे गुर का मन माने
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ
0: नानक बार गुर को बल जा
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कश परम
1: सह सियान पुलिया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: वर्षत चरणगत निर्मल रीत
1: भेट संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुनकर वचन कर्म आगामी
0: मन संतोखा तंपति जाने
1: पूरा गुर अक्यो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्ट पे कह हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भावे तिस लए मिलाए
1: जे वाहे को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: कहु बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगमा गोचर प्रभु निर्वाणी
1: मेरा हार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन रित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुरु अपने
0: नानक जिस प्रसादा सा प्रभु जपने
1: यो हर रस पावे जन कोई
0: अमृत पीवे अमर सोए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणतास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परम बहु दुख तैते नासे
1: सत माही ठांड बरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: भव चुका निर्भव होए बसै
0: सगल व्याध मनते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: सा संग जप नाम मुरारी
1: थित पाई चुके भ्रम गमन
0: सुन नानक हर हर दस सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभु आप नाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सब निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साधक संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चल बिन भजन दिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी
1: संत जना मिन करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवरोह पाप स्वामीत पसारो,
0: शरण कमल विद मैं उरतार,
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
0: दृढ़ कर गहो नाम हर बथ,
1: एहो तन संजो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुंट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस सोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटै हर अवखत लाए,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थापते बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: हो बिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: सत विचार कहे जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: क्यों रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करहु मन लाए,
0: मन वंचित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सोत मीत कुटम हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस स्थिर रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गोती मातू ले आने,
0: भक्त बिना बहु डूबे सियाने,
1: भक्ति भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तबारो चीत,
1: चरण कमल रखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपाव हो,
0: संत कहते रहत गत पाव हो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: नरस जाय हो मैं बिख फैल,
1: ओहे अचिंत बसै सुख नाल,
0: सात ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संत करो व्यवहार,
0: हम सब दर गए जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: तो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको सलाह,
0: एक समझ एको मन आहे,
1: एक स्के गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे उप्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक अराध प्राष्ट गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए अष्टपदी,
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरी शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ के गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें त्याव,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: भजन करो प्रभ की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: चाहो साध का संग,
1: परे शरण आन सब त्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: किछ पुन्नी श्रद्धा सा पूरी,
0: कब रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाए,
1: सोक्यों बिसरे जे काल न भाने,
0: सोको बिसरे जे किया जाने,
1: सोक्यों बिसरे जे सब कुछ दिया,
0: सोको बिसरे जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरे जे अग्न मह राखै,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते काट है,
0: जनम जनम का टूटा गंड है,
1: गुर पूरा तत् एह बुझाया,
0: प्रब अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अबरे नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिय संसार,
0: भक्ति तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निद नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का हो नाश,
0: नानक नाम जपो गुण पास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाओ,
1: नेत्रों देख दर सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: अल्लाह को पावे संग,
1: एक बस दीजै कर माया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: प्रभ बख्शंत दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आत पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होए पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी शोभा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संग प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरह
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग परे परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदाहर
0: आप त्रैलोक का निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजय
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिनके साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: काल जंजाल विकास के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्थित करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए अस्थान
0: लहर न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए फल तिस जन कै मुख भनी
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
1: ओट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सब ते ऊजता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

एक ना लेखै। सोध सुपाह दुरंत दुबाह सुशासनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन मैं कर परबद पंखले ना हलेंगे। तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान जान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अबचार हिसार की ताल पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गढ़ाण के तोरन हार सुबत नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सर नायक जाच के अनेक सु एक दिवैया। दानव देव फनेंदन साचर भूत भिवेक भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब ताप तपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैर तुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नादप जान त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाज गजान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सती पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नार श्री पाद के प्रास हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद

परलोक गवायो। बास कियो बिखियान सो बैठ कै, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहाँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गले लटकायो। काहू लिखियो हर अबाची दिशा, मह काहू पछाह को शीस निवायो। को बुतान को पूजित है पास, को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। को बुतान को पूजित है पास, को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दया रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रह हमारा अपना। जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम का बहो। आप हा दय मोहे बचाव, हो सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दया करिए। सब बैरन कौ आ संघरिया, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ। जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी अहे, चुन चुन सत्र हमारे मारी अहे। आप हास दया मुझे अबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तो जू करिय हो रच्छा। राख ले हो मोह राख न हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बाल दुष्टन के हंता, तमोहपुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिव जुगवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव जा जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिय हो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बाध्य कियो। घट घट के अंदर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब प्रकृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाण, घट घट के पढ़ पढ़ की जान। जाबोध करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो, कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर। सब हूँ जेते बदन श्रेष्ट सब धार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निरिबका निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जागो पेव न पावत बेदा। ताकाओ कर

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री हस्त हुजा पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछित फल पावे सोई, दुख न तसै व्याप्त कोई अडिल। सुनया गुंग जो याहे, सो रसना पावई, सुनया मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भाव निकट ना तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई। संबत सत्रह सहस पणिजै, अर्ध सहस पुण तीन कहिजै, भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आख तरे नहीं आनेयो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह माते एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बह भेद कह, हम एक न जाने। ओ श्री अस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहे तुम्हारो द्वार, बाहें गहे की लाज आस, गोविंद दास तुम्हार सगल।

मूलेन कीचै, जित अंत पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। आगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जान हे जी। अजंत सब खेल तेरा, क्या को आख बखान है। आखे ता वेखा हे सब तू है, जिन जग तू पाया, कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया। सुर नार मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जीए जंद सब तुद उपाय, वेख परसने आया, लभ लुभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता, हकेरी बिखम मार्ग चलना, लभ लुभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्या हो तिखी वाल हो निकी, एत मार्ग जाना गुर प्रसादी, जिन्नी आप तजिया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। जिहो तू चलाए हो तिव चलह स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए हो तिव चल जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्यावे। सचो त्यावहे जात दुभावहे, गुरमुख जना बुझावहे, एहो सा सबना का खसम जिस बगसे सो जन पावहे, कर कृपा जन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्यावहे, जिसनो कथा सुनाए हे अपनी, से गुरद्वारा सुख पावहे। कह नानक सच सोहिला, कह नानक सच्चे साहिब, ज्यो भावै तिवै चलावे, एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया। एहो तनकै मन वसिया, जंतरोह लिखिया आया, फिर हे कनेरे करह गल्ला, गली कनै न पाया, कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहत सिओ पवित संगत सबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज ना उपजै बिन सहजै सहसा ना जाए, नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहस जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, मन तो वहो शब्द लग हो हर सों रह हो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए एह सहसा ए बजाए। जी हो मैले बाहर निर्मला, बाहर निर्मल जी होता मैले, तिनी जन्म जू है हारिया, एह तसना वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारिया, वेदा मह नाम उत्तम सो सुनहे नाही, परे जो बेतालिया, कह नानक जिन साच तजिया कूड़े लागे, तिनी जन्म जू है हारिया। जी हंदरमल बाहर हंदरमल, बाहर होता निर्मल जी हंदरमल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुँचा नाही, मन सा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे, कह नानक जन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई जी हो रहै गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै समाले। आप छड सदा रहै परणै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संतहु सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुगत ना पावै, पावै मुगत ना होर थै कोई, पुछो बिबेकी जा जाए। अनेक जूनी भरमे आवै, बिन सतगुर मुगत ना पाए, पर मुगत पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए, कह नानक विचार देखहो बिन सतगुर मुगत ना पाए। आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गाव हो सच्ची बाणी, बाणी ता गाव हो गुरु केरी, बाणी आसर बाणी,
ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਨਾ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਹੋ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹੇ ਰਸਨਾ ਕਹੇ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਚੇਤ ਜਿਨ ਕਾਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸਿਵ ਸਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਏਕ ਸਿਉਂ ਲਿਵਲਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਮਿਹਾਣੀ ਗੌਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਮਿਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਮਨਹੁ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਵਟ ਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਉ ਆਪ

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय

जानिए नर दे सच्चा हुए कूड़ के मल उतरे तन करे हसा तोए सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसी ता।

बॉडी दान में डातली खाक जे मिले तमस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी हो एक मन लख त्याई है फल तवे पाई है जे वे ही कर कमाई है जो हो पूर्व लिखा था तूरत नदी पाई है मत थोड़ी सी उगवाई है मत थोड़ी सी उगवाई।

एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फरे अंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याईया जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौंड दे आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी पंथ दे वाली लोक प्रलोक के सहाय अमृत के दाते सच्चे पिता जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां जी दे जोत ताकत चावर छत्र दे मालक सर्ब कला भरपूर जुगो जुग अटल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन पाठ उपदेह जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वांड छकिया देग चलाई तेग वाही देग सुन करन डिठ कीता तना प्यारियां सुचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीख दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां।

अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी, जलन बुझी सतगुर का दर्शन पाए जियो, सुकाहो टल गौर सेविया, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद दिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जित ते पृथ्वी नाव खंडना है,

दान से जा नारी भूम दान ऐसो दान नितो नित कीजे। घोड़िया दा दान कर, गवां दा दान कर, इस्त्री दा दान कर, पर सच्चे पातशाह किन्ने सिमरन दे तुल कुछ भी नहीं।

अरबद नरबद धुंधो कारा धरण न गगना ए धरती नहीं सी गगन भी नहीं सी ये ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे नहीं सी। इस धुंध दे च एक कवाओ होया कवाओ ओवंकार उस तो अरबां खरबां सूरज बनाए एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े धुंध पानी बन गई ए धरण ए धरती सूरज दे टुकड़ा समा पाके जब ठंडी होई तो ये फिर पत्थर दे रूप दे प्रगट हो संसार दिच आकार पहले पत्थर दा बनया पत्थर लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद मिट्टी बन बनस्पति बनया बनस्पति लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षियां दी शक्ल दिच प्रगट होया और पशु पक्षी लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप दे प्रगट होए उनु मानव कहंदे ने मनुख कहंदे चूंकि मनुख उन्हां सारियां तो लंघ के आया है तो कुछ ना कुछ संस्कार सारियां दे इहदे विच हैगे पत्थरां तो लंघ के आया है बनस्पति तो लंघ के आया है पशुआं तो लंघ के आया है मनुख बने मैं एक मिनट लवा पत्थर टोटली सुत्ता होया है तो सुते हुए की कोई लोड़ नहीं आती पत्थर की कोई लोड़ नहीं पत्थर जब मिट्टी बन के बनस्पति के रूप में प्रगट होया है तो थोड़ी जी बनस्पति जागी उसकी लोड़ है पानी उसकी लोड़ है प्यास लगती है बनस्पति लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप में प्रगट होए वो पशु पक्षी इन्हां नूं निरी प्यास ही नहीं लगती भुख भी लगती इन्हां कोल आवाज भी है और पशु लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद मनुख की शक्ल में प्रगट होए मनुख कोल भुख प्यास तो है आवाज भी है पर आवाज दे कोल अल्फाज भी ने अखर भी ने पशुओं कोल नहीं ने और मन इस मानव दा पशुआं नालों बनस्पति नालों ज्यादा जागे है मनुष्य दा मतलब भी है जिदे कोल मन है मन रखदा है जो विचारां दा प्रवाह रखदा है सोचनी दा प्रवाह रखदा है यादां दा प्रवाह रखदा है चिंतन दा प्रवाह रखदा है मानुष मनुख मनुख तो पिछे ने पशु पशुआं तो पिछे है बनस्पति बनस्पति तो पिछे है पत्थर आकार रूप दे इंज कह लो वो सारे ही पशु ने पशु का मतलब जो पास देच ने पछड़े हुए ने पिछे ने इन्हां पशुआं देच चौपाए जानवर पंछी इन्हां पशुआं देच बनस्पति इन्हां पशुआं देच पत्थर प्रकृति चलांदी रही प्रकृति दे अखरी अर्थ ने नेचर नहीं ने इहदे अर्थ जो इंग्लिश दे च नेचर कर लेंदे ने नहीं पर कृत कृत तो पहले तो कृत तो पहले ते करता है ये सब कुछ करते तो चलता है करते पुरुख तो चलता है कर्ता पुरुख की है एक महा चानण है प्रकाश है उसे तो अरबां खरबां सूरज होए परमात्मा सूरजां दा महा सूरज है नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे परमात्मा तो अनंत सूरज होए सूरज तो ही अनंत धरतियां होईयां पत्थर होए बनस्पति होई पशु होए मानव होए प्रकृति चलांदी रही ऐसा भी सी किधरे तन अगे लंघ गया मन पछड़ गया किधरे मन अगे लंघ गया तन पछड़ गया जैसे कुछ हाथी गऊ मोर हंस मन ते उन्हां दा अगे चला गया कुछ एक दा समझ ज्यादा है पर तन पिछे रह गया अजे पशु ने किधरे किधरे तन ते अगे लंघ गया मनुष्य बन गया मन पछड़ गया।

मंदिच वासना बड़ी प्रबल है, चलिए पर चलण दी समर्था पैरां विच नहीं है। मंदिच बड़ी प्रबल वासना है पदार्थां नूं भोगण दी, इंद्रियां दी सत्या है नहीं। कहिंदे ने एक जवान दी पीड़ा नालों हजारां गुणा वध पीड़ा हुंदी है बुढ़े कोल। क्यों? जवान नालों हजारां गुणा वासना उसकी वध गई है, उम्र दे नाल नाल वासना वधदी है। उन्हां वासनावां दी पूर्ति कर सके शरीर साथ नहीं दिंदा, शरीर साथ नहीं दिंदा। इस वास्ते बुढ़ा बहुत पीड़ा विच जीवदा है, बहुत पीड़ा विच जीवदा है, बड़ी मानसिक पीड़ा आउंदी है। बुढ़ेपा खुद एक रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिर्त न जन्म जरा। असी हुण अपना घर उत्थे बनाया जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं। जन्म है तो दुख है, जीवन है तो दुख है, और मरण है तो दुख है। तो प्रश्न खड़ा होंदा है, जीवन दे होंदे हो या जीवन तो छुटकारा किवें मिले, मौत दे होंदे हो या मौत तो किवें बची है, और जन्म हो गया है इनू भुलाइए किस तरह, किवें भुलाइए। इन्हां रोगां तो उवें छुटकारा होवे। प्रथम चिंता तो किवें बची है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक बड़ा कीमत, जिन्हों भोग समय अखंड पाठ साहब का जद या खुले पाठ का जद भोग पैंदा है, श्लोकां दी बाणी चलदी है। इस श्लोक दे आमदियां सारे ही बड़े उत्साह नाल उमंग नाल पढ़दे ने, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मारग संसार को नानक थिर नहीं कोए। पर जिन्हां अर्थां विच जगत इस नूं पढ़दा है ए अर्थ नहीं है। अज तक जिन्हां अर्थां विच इस नूं पढ़िया जा रहा है ए अर्थ नहीं है। मनुख इस दे अर्थ करदा है, अनहोनी घटना घटे ते चिंता कर, भाव मौत हो गई है, अनहोनी हो गई है। कोई जवान जद बुढ़ा हो जांदा है कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। बीमारी चरम सीमा ते जद कोई पहुंच जांदी है तो कह देंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। काटा पै गया, दिवालिया हो गया, कहिंदा मेरे नाल अनहोनी हो गई है। उसदी कर जो अनहोनी आउंदी है। श्लोक दे ए अर्थ कीते जांदे ने ए अर्थ नहीं ने। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, विश्राम नाल पढ़ना पवेगा। प्रथम ये देखना पेगा चिंता किस गल दी है। चिंता दे कारण दो ने, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मनुख दी चाहत है। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पड़ोसी नाल होया होवे पे मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा, ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी तलब है, मेरी चाहत है, मेरी ख्वाहिश है, ऐसा होना ही चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, मता ना होवे। चिंता दे ए दो कारण ने, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता, ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहना। पहले इस गल दे चिंता है किधरे हो ना जावे, जो मैं नहीं चाहता किधरे हो ना जावे, और जो मैं चाहना ऐसा ना होवे किधरे ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं, चिंता नो एक पासे रख, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता नो परे सुट, जो होंदा है वह होंदा है, जो नहीं होंदा वह नहीं होंदा। अगर एक बुढ़ा आखे कि मैं मासूम बच्चे दी तरह हो जावा, ये नहीं होंदा, ये नहीं होंदा। और एक जवान ए आखे कि मैं कदी बुढ़ा ना हुआ, ए नहीं होंदा, ए नहीं होंदा। एक बुढ़ा ए आखे मैं कदी नहीं मरा, ए नहीं होंदा, ए नहीं होंदा। जो होंदा है वो होंदा, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। जन्म हो गया होना सी, मरण हो गया होना सी, नफा हो गया होना सी, नुकसान हो